नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों

संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आरका
1: लक्स सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन

0: जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
5: सुमन कल्याणपुर कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार

कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। यह खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान

0: खान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours
1: 107.1 MHz Musically Yours पर आज आप लोगों को याद करते हुए है हाजिर आपकी आरजे दोस्त। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर फूल की खुशबू एक जादू जगाती है। चाहूं ना चाहूं कितना भी दोस्तों, बस आपकी यादें दौड़ी चली आती हैं और इस यादों के साथ ही मैं भी यानी आपकी आरजे दोस्त भी दौड़ी चली आई है आपसे मिलने, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है दिल से दिल तक यानी कि दिलों को मिलाने वाला। वैसे आज संगीत की सितारा हमें छोड़ के चली गई, संगीत के आसमान का वो चमकता सितारा जिनके गीतों को सुन सुनकर हम बड़े हुए, जिनके मधुर गीतों में हम खो गए, उनकी यादों को अब यादें ही बची हैं शेष, उनको श्रद्धांजलि, सर श्रद्धांजलि उन्हीं के गीतों के द्वारा।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त वैशाली। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की बातें हम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे में नहीं समटा सकते। बात करेंगे हम ढेर सारी हम अपने अगले सेगमेंट में। आज हम बात कर रहे हैं सुबह के सेहतबाज यानी कि जॉगर्स, वो भी खास कर मुंबई के जॉगर्स। जी हाँ, सुबह सुबह जब पंछी चहचहाते हैं, ओस की बूंदें पत्तियों पर इठलाया करती हैं, बादलों से आँख मिचौली खेलता सूरज क्षितिज के पार से झांकने लगता है और कायनात गहरी नींद से जागकर नए दिन का आगाज करती है, तो जॉगर्स पार्क में हो जाती है चहल पहल शुरू। कुछ लोग ट्रैक पर दौड़ते हाँफते दिखते हैं, कुछ योग में और कुछ योग निद्रा में, और कौन क्या क्या करता है इसके बारे में हम करेंगे बातें। सुन लेते हैं पहले इस मजेदार से तक धुम धुम ट्रैक को।
3: तक धुम बजे।

जी हाँ, सुबह हो चुकी है और सुबह के सेहत बाज यानी हमारे मॉर्निंग जॉगर्स, हमारे मुंबई के मॉर्निंग जॉगर्स निकल चुके हैं। जैसे कि यहाँ आसपास की बात करें तो मरीन ड्राइव, कुपरेज बैंड स्टैंड, कई गार्डन और ऐसी खुली सड़कों पे जब सुबह के ये सेहत बाज निकलते हैं तो नज़ारा अलग ही देखने लायक होता है। किसी नन्हे बच्चे की मुस्कान पर किसी ने क्या खूब लिखा है, दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जनाब, दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जनाब, जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। अरे पर ये तो क्या, ये पिंटू, पिंटू की मम्मी, पिंटू के पापा, पिंटू की चच्चा, पिंटू के अंकल आंटी सभी दौड़े जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ कहाँ? अरे ये तो पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं जी, जॉगिंग। अच्छा तो ये है वो मॉर्निंग जॉगर्स जो सेहत बना रहे हैं। इन्हें देखकर तो मिल्खा सिंह भी शर्मा जाए।

9:07 और 7 सेकंड हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और बात हो रही है आज मॉर्निंग वॉकर्स, मुंबई के मॉर्निंग वॉकर्स किस किस तरह के होते हैं भाई। कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जब रंग बिरंगे बेशुमार मौसमी फूल पार्कों की शोभा बढ़ाते हैं, तब खिले रहते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। वैसे तो वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रहता है, फूल तोड़ना मना है, मगर निषिद्ध को सिद्ध कर दिखाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फूल दिखे नहीं कि बस कुछ लोगों की आंखों में आ जाती एक अजीब सी चमक, चुन चुन कर एक एक फूल पूजा की टोकरी में यूं समाने लगते हैं मानो आज के बाद बस ये मिलेंगे ही नहीं। अब भाई किसी देवता को लाल फूल पसंद है, किसी को सफ़ेद, किसी को पीले फूल चढ़ाने क्योंकि उनको करना है भगवान को प्रसन्न, किंतु ये भक्त नहीं जानते कि बेचारे ये फूलों को कुर्बान करके क्या पाना चाहते हैं। कुछ लोग तो भाई नाक भौं सिकोड़ती भी हैं कि मत तोड़ो मत तोड़ो, पर बेचारे कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि जो पार्क्स है ना उन पर सबका है बराबर का अधिकार। तो अब कैसे टोकें, खैर फूलों की सुंदरता उनके लगे रहने में ही है, ये तो आप हम सब जानते हैं। अब इसे अपना के भी थोड़ा सा आजमा के भी देखिएगा क्योंकि ये सुंदरता जहाँ है वहीं दिखे तो उसकी 100% इसके जो बढ़ावा मिलता है, जो सुंदरता के वाकई फूल खिलते हैं उन्हें खिलते रहने दीजिए, है ना। कल से आप ध्यान रखेंगे ना।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: म्यूजिकली योर्स और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर. और आज का ये कार्यक्रम मुंबई के मस्ताने यानी मुंबई जॉगर्स की बातें हो रही हैं. ये मस्त मुंबई में जो बातें कर रही है आपके आरजे दोस्त वैशाली. बहुत सारे लिसनर, प्यारे प्यारे लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. श्रीधर मोराजकर, पंकज मोहर, प्रमोद चिंचोलकर, फिरोज सिगानपुरिया, डॉक्टर अंजू अंधेरी वेस्ट से और अंधेरी ईस्ट से, इसके अलावा वासुदेवन बदलापुर से, आनंद मोकाशी जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे जी जुड़े हुए हैं, रजनीकांत पाटिल वर्धमान से जुड़े हुए हैं और बाबा दादर से जुड़े हुए हैं. आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. बात हो रही है मुंबई जॉगर्स की. तो एक और जो आपने देखा होगा, जब आप खुद भी जाते होंगे गार्डन में या रोड पर वॉक करने या कहीं किसी सी शोर पर, तो आप क्या देखते हैं कि खूब जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है, आती है ना, क्योंकि हर जॉगर्स पार्क में एक लाफ्टर क्लब होता है. दिन भर बॉस की झिड़कियां झेलते और घर में बीबी की गर्जना से भयभीत ये लोग जॉगर्स पार्क में जाके सारी सारी सारी कसर निकालते हैं. इनका अट्टहास और भीषण हंसी सुनाते जाते लोग हंसना भूल जाते हैं. और इस क्लब के सदस्यों की जब वो एक साथ यानी समवेत हंसी गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो कई शेर एक साथ दहाड़ रहे हों. कभी कभी नन्हे बच्चे इन्हें देख के माँ के आंचल में दुबक जाते हैं. गाड़ियों पे झटके से ब्रेक लग जाते हैं. चहचहाते पंछी कुछ पल खामोश हो जाते हैं. जैसे ये मजाक की बातें हैं, वास्तव में जब ये हंसी दिल से निकलती है ना तो आपके फेफड़े खुल जाते हैं, आपका दिलो दिमाग तरोताज़ा हो जाता है. और ये हंसना बहुत ज़रूरी है. हम शुरू करते हैं इसको आर्टिफिशियल हंसी से, किंतु जब ये हमारी रियल हंसी में बदल जाती है तो ऑक्सीजन की कमी पूरे शरीर की उन चंद मिनटों में पूरी हो जाती है ना. जैसे कि अभी आपकी ये कमी पूरी होने वाली है इस ट्रैक को सुनकर.
1: चल शुरू हो जा.

0: अरे बस बस बस बस, सा पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
2: ये बात है
1: तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

ये गीत का जो फिल्मांकन है, जब हम इसे सुनते हैं तब भी वही सामने आ जाता है, पिक्चराइजेशन, और सब लोग बैठे हुए हैं, एक एक के सर के ऊपर तबला बजा रहा है और एक गीत हो रहा है। वैसे ये हंसते खेलते गीत के साथ हमने अपने दिल की बात भी कह दी कि लपक झपक के आ जाओ बदरा, ये इस गर्मी से मुक्ति दिला जाओ बदरा। बात हो रही है वैसे सुबह सुबह के सेहतबाजों की, मॉर्निंग वॉकर्स की। मुंबई के मॉर्निंग वॉकर्स क्या क्या करते हैं अभी नहीं ले लीजिए। अभी आपको पता है 21 जून आने वाला है। 21 जून क्या होता है? विश्व योग दिवस। जी हाँ, तो ऐसे असंभव आसन प्रेमी भी होते हैं जो योग क्रांति का आगाज कर रहे हैं, योग के बिना, जो मानते हैं कि बिन योग सब सून है, और ये सही भी एक है। तो जॉगर्स पार्क में ना हरी हरी घास पर बैठे इन योग प्रेमियों को कई बार आप असंभव आसन करते हुए देख सकते हैं। वैसे इनका तोंत जो होता है ना, तो उनका व्यास तो कम नहीं होता, लेकिन सांस भी फूलती है और जरा सी देर में हांफने लगते हैं, मगर अपने पैरों को पीछे की ओर से आगे लाने में और हाथों को सिर के पीछे ले जाकर पैर पकड़ने की योग कला में ये इतने उलझ जाते हैं कि कई बार हो जाते हैं खुद ही गुत्थम गुत्था।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: म्यूजिकली और आपके साथ है आपके आरजे दोस्त वैशाली, और बातें हो रही मुंबई जॉगर्स की भी। मुंबई के मस्ताने चल रहे हैं, मुंबई के मस्ताने क्या ना करें, क्या क्या करें, सब कम है। 9:32 और 32 सेकंड हो चुके हैं, बातें आगे बढ़ाते हैं हम, परेड करते लोगों की। जी हाँ, वो वाली परेड नहीं जो 26 जनवरी या 15 अगस्त पे होती है, ये स्कूल्स में पीटी क्लास या जिम में डंबल्स की एक्सरसाइज सबने की है ना, उस परेड की बात हो रही है। मगर पार्क में क्या होता है, बड़ी बड़ी लाठियों के साथ एक्सरसाइज करते कुछ लोग भी अक्सर दिखाई दे जाते हैं। वैसे पार्क में एक बेंच भी होती है, उसके भी बड़े फायदे हैं, जानते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज के लिए पार्क में यदि वैसे हम जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक करते हैं ना 5 मिनट भी, तो वो काफ़ी सेहतमंद होती है, जो कि कोई जिम नहीं दे सकता। और ज़्यादातर लोगों की, हम पार्क बेंच की बात कर रहे थे, तो पार्क बेंच की जो ऊंचाई होती है ना, वो स्टेप अप्स करने के लिए बहुत सही होती है अधिकांश लोगों के हाइट के हिसाब से। बस एक रिक्वेस्ट जरूर है, जब आप ये पार्क बेंच को यूज़ करें तो जूते उतार कर करें, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग उसी बेंच पर बैठते हैं। अब एक्सरसाइज क्या की जा सकती है, बेंच से कुछ फीट पीछे खड़े होकर हाथों को सबके ऊपरी और सतह पर रखकर आप पुशअप्स कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन सुधारने के लिए सीटेड स्क्वाट्स किए जा सकते हैं, जिससे ग्लूटस और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूती मिलती है। और बेंच के फायदे जानने वाले लोग क्या करते हैं, बेंच साइड प्लैंक्स भी करते हैं, जिससे कमर और ऑब्लिक मसल्स की एक्सरसाइज होती है। और जो डंबल्स की बात करते हैं हम, तो ये जो डंडे से जब एक्सरसाइज करते हैं ना लोग पार्क में, तो खूब कलाबाजियाँ दिखाते हैं, और इस कलाबाजियों के चक्कर में ना कई बार क्या होता है, पीछे

के सिर पर डंडा बच जाता है और वो बेचारा सिर पकड़ कर बैठ जाता है, लेकिन तभी पड़ती है सीटी सुनाई और वो बेचारा सिर का दर्द छोड़ करके, छोड़ के क्या मतलब भूल करने की, मतलब दिखावा करके भूल का, और फिर बढ़ जाता है आगे कुछ इस तरह से।

दे दनादन जी हाँ, ऐसा करना नहीं है आपको, अपने केवल जॉगिंग या अपने आप एक्सरसाइज ही करनी है जब आप जाते हैं मॉर्निंग में जॉगिंग करने के लिए, ठीक है ना। इसके सिवा आपको कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ हेल्थ बनाना, ठीक है। अब कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं जो कि अपना पुराण जीवन पुराण और भगवान को तो याद करते हैं, परिवार पुराण के साथ अपनी भक्ति को साझा करते हैं। जी हाँ, इन्हें भगवत भजन में लीन नज़र आते हैं। ये जो कुछ लोग होते हैं बेचारे, जो परिवार से उपेक्षित होते हैं या परिवार में अनुपयोगी मान लिए जाते हैं, वैसे कीर्तन नहीं करते, कीर्तन के साथ साथ भी बहुत कुछ करते हैं, पर अभी हम उनके कीर्तन की ही बात को आगे बढ़ाते हैं।

0: बच्चों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: भाई जैसे हम कह रहे थे ना कि ये कीर्तन तो होता है पर कीर्तन के साथ भी होती है राजनीतिक बहसें भी भाई कोई कहता है कि भाई साहब इस बार तो ये ए ही जीतेगा और नहीं नहीं जी इस बार तो बी ही जीतेंगे और दूसरे सज्जन ये भविष्यवाणी करते हैं नज़ारा कुछ कुछ पार्लियामेंट जैसा हो जाता है पार्क में कई बार तो बहस इतनी बढ़ती है कि लोगों को बीच बचाव करना पड़ता है और तब लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है गर्मा गर्म बहसों के बाद कभी कभी शांति का प्रस्ताव भी पारित होता है जाने दीजिए भाई साहब हम खामखा क्यों बहस कर रहे हैं ए आई या बी हमारी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है पर हाँ ये सब बातें करके लगता है कुछ तो होने वाला है और कुछ तो हो चुका है ना

जी हाँ, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है, क्यों नहीं होगा जब आप हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने आरजे दोस्त वैशाली के साथ। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ ना हो। अच्छी बहुत कुछ होता है क्योंकि ये दिल से दिल का मामला है। जी हाँ, और वैसे दिल से दिल के मामले की भी बात करेंगे, किंतु पहले एक ये भी बात कर लेते हैं कि जब ये जो जॉगर्स होते हैं ना, मुंबई जॉगर्स भी, तो दातून तो भाई नीम की करेंगे ऐसा, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि नीम की दातून बेस्ट होती है। अब नीम का पेड़ दिखा नहीं कि लग गए उसकी शाखाओं को तोड़ने में। अब खुद ने भले कोई पौधा ना लगाया, और बाकी हाँ, ये दातून प्रेमी और लोग भी ना, वो भी आ जाते हैं, और ये हरा भरा हंसता हुआ नीम का पेड़ बेचारा, तो और वैसे बेचारा वो है। बाकी जब कोई हरा भरा जब पेड़ है तो उसके कितने सारे फायदे हैं। हाँ हाँ डार्लिंग, शाम के ठीक 5 बजे बस वहीं मिलेंगे, अरे उसी जॉगर्स पार्क में, प्रेमी ने बताया मोबाइल पे, और सज धज कर आगे प्रेमी का। लवर्स पॉइंट भी बन जाता है ये जॉगर्स पार्क, क्योंकि एकांत में मिलने के बजाय पार्क की भीड़ भाड़ में यदि मिलते हैं तो कई फायदे हैं। लोग सोचते हैं कि सेहत बनाने के लिए आए हैं, बात सही भी है, आखिर प्रेम की सेहत भी तो मिलने जुलने से ही बनती है ना। तो हम भी अपनी सेहत को रखते हैं चुस्त और दुरुस्त। वैसे जो जॉगल्स की बात है, यानी जॉगिंग या पार्क में जाने की बात है, भाई एक्सरसाइज तो हम कहीं भी कर सकते हैं, किंतु हम आज खास बात कर रहे हैं कि जब हम गार्डन में किसी पार्क में करते हैं एक्सरसाइज, तो क्या फ़ायदे हैं, जो कि जिम नहीं दे सकता क्योंकि एक्सरसाइज तो वहाँ भी होती है, किंतु जहाँ जो जो गार्डन होते हैं वो आप विविध क्षेत्रों के अलग अलग पृष्ठभूमि और ऊर्जा वाले लोगों से वहाँ पे मिल पाते हैं, और इसे अपने आप में सामाजिक और जादुई रूप से प्रेरणादायक बनाता है, क्योंकि वहाँ लोगों से मिलना बातें करना एक सुकून देता है ना। अगर आप बिना हेडफोन के एक्सरसाइज या वॉक करते हैं गार्डन में, तो पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट आपका तनाव कर देती है कम। 100% बात सही है। और आउटडोर गार्डन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका मन वहाँ किसी से कंपटीशन नहीं करता, जैसे जिम में जब हम देखते हैं बाजू वाला क्या कर रहा है, आगे वाला क्या कर रहा है, अरे इसने तो इतने पुशअप कर लिए, इतने तो इतने प्रैंक कर लिए, वो सब नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि आप रोज़ाना लोगों को देखते तो हैं और वो भी आपको जानते हैं, पर उनसे कोई व्यक्तिगत ऐसी जान पहचान नहीं होती कि आपको कॉम्पिटिशन तक पहुँचना पड़े या पहुँचे आप, है ना। और जब आप पार्क में वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो हरे पेड़ और नीला आसमान मानस पटल पर ऐसा अनोखा दृश्य बनाते हैं जो जिम का माहौल कभी कर सकता है, कभी नहीं जी, कभी नहीं। तो कभी चुपके से मुस्कुराकर देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर देखना, ये जिंदगी तेरी खिलखिला उठेगी, हम पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातें कहता है पार्क आपको। रघुनाथ कानूकर कोल्हापुर से जुड़े हैं, सुनील स्वप्निल जोशी रत्नागिरी से, विजेंद्र घाटो लकोला से, महेश बोहरा जुड़े हुए हैं, प्रणव शिंदे जी ने कुछ लिख के भेजा है, तेज रफ्तार शहर में सुकू एक किनारा है, मुंबई के जॉगर्स पार्क में हर सवेरा कितना प्यारा है, लहरों की आवाज़ है, ठंडी हवा का झोंका है, भागते हुए जिंदगी को यहाँ खुद से मिलने का मौका है, मरीन ड्राइव की वो सुहानी सुबह और जॉगर्स का ये मेला, इस हसीन मंजर में कोई भी खुद को न पाए अकेला। क्या बात है, एकदम 16 आने सच। सूरज की पहली किरण जब पानी पर बिखर जाती है, मुंबई की यह सुबह दिल में नई उम्मीद जगाती है, और इसी प्यार के साथ आप और हम इस सेगमेंट में मस्त मुंबई से लेंगे विदा। फिर नमस्ते भारत में आपसे मुलाकात होगी, और बीच में आप सुनेंगे समाचारों का भंडार। जी हाँ, उसी के चलते तो आप और हम रहते हैं सजग। तो अभी इस सेगमेंट का, फिर मिलेंगे चलते चलते।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्टूडियो की घड़ी में ठीक बज चुके हैं 10 और ये वक्त होता है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी। सुमन कल्याणपुर 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती हैं। समाचारों में आगे, म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। खबरों के अनुसार नामकाम शहर के कामटप गांव में दोपहर को हुए इस विस्फोट में तकरीबन 70 लोग घायल हुए हैं। आगे समाचार खेल जगत से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में विराट कोहली की नाबाद 75 रन पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 2 ओवर शेष रहते मैच जीत लिया। समाचार यहीं पर समाप्त हुए। म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। साथ ही सुन सकते हैं आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। जी हाँ, और नमस्ते भारत में है प्रीत जहां की सदा, जिनसे हमने प्रीत लगाई सुमन कल्याणपुर, उनकी बातें होने वाली हैं आज इस कार्यक्रम में। और आज एक खास शख्सियत का बर्थडे भी है, उनकी भी बातें होंगी। तो पहले हम चलते हैं अपने सुरीले सफर पर उन्हीं के गीत के साथ, उन्हीं के लिए।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%

0: 5.30%, senior citizen 7.30%, monthly or quarterly interest options ke saath, 16 mahine, sharte lagu.
1: Cosmos Cooperative Bank, enriching life.
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

सुमन कल्याणपुर यानी कि सुमन ताई हमारी, जिन्होंने कि हजारों गीत गाए। लता जी से उनकी आवाज़ में बहुत समानता थी, आपने बार बार सुना होगा, पढ़ा होगा, यानी उनकी आवाज़ इतनी मिलती थी कि कई बार जब लता जी का संगीतकारों से झगड़ा होता तो सुमन जी को गाने मिल जाते थे। कई बार रॉयल्टी भी लता जी के गानों, मतलब सुमन जी के गानों के लता जी तक पहुंच जाती थी, इतना होता था। एस डी बर्मन की पसंदीदा गायिका थी और रफ़ी साहब के साथ उनकी जोड़ी बड़ी हिट रही। हमने अभी तक जितने भी गीत सुने सुमन कल्याणपुर के, वो उनके साथ में जो डुएट सॉन्ग थे ये सारे, इसमें थे मोहम्मद रफ़ी उनके साथ। और एक और ऐसे ही डुएट जो हम सबके दिल की आवाज़ों में, दिल की सांसों में बसा है।

सुमन कल्याणपुर जी ने शंकर जयकिशन मदन मोहन रोशन रवि कल्याण जी आनंद जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सभी दिग्गजों के साथ काम किया। जी हाँ, और साथ में काम किया एयर इंडिया में भी, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव की, लो प्रोफाइल रहने वाली, कभी लाइमलाइट के लिए उन्होंने विवाद ही नहीं किया और इसी वजह से कई बार कई अवार्ड से वे चूक भी गईं। यदि क्लासिकल गीतों की झलक देखी जाए तो अभी जो आप गीत सुन रहे थे इसके साथ ही एक और गीत उनकी क्लासिकल क्षमता को पूर्ण रूप से उजागर करता है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाला। एक्चुअली ये बहुत सालों बाद शायद मुझे लगता है आपने एक गीत सुना होगा, क्योंकि ये गीत सुमन कल्याणपुर की ऐसी दर्दीली आवाज़ में है कि जब आप इस गीत को सुनते हैं तो इसके भाव में खो जाते हैं। और ऐसा ही एक और गीत, यानी जब विरह के गीत, दर्द भरे गीतों की बारी आती है, तब सुमन कल्याणपुर की वो आवाज़ हमें दिल की गहराई में उस दर्द को जगा देती है। देखिए ना, अगला गीत भी कुछ ऐसा ही भाव ला रहा है।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वैसे सुमन जी के गानों की लिस्ट जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। मोहम्मद रफ़ी के साथ कई सुपरहिट डुएट उन्होंने दिए हैं, ना तुम हमें जानो, आजकल में ढल गया, तुमने पुकारा और हम चले आए, अजहू ना आए बालमा, ठहरी ये होश में आलू। चलिए गाना निकला जा रहा है, पहले सुन लेते हैं फिर।

0: जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर ने 3000 से अधिक गाने गाए, बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए। बचपन से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली, शुरुआत करी उन्होंने आर पार फिल्म में मोहब्बत कर लो जी भलो उसके कोरस के सॉन्ग से। उसके बाद बहना ने भाई की कलाई से, रेशम की डोरी का ये सॉन्ग जो है वो राखी एंथम बन चुका है। जी हाँ, हम तब इसी गीत से राखी का त्यौहार मनाते हैं। और बहुत सारे दिग्गजों के साथ, बहुत सारे साथी कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, गाना गाया, और कुछ अवार्ड से जरूर वो चूक गई, बाकी हम सबके दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई है वो कभी हम भूल नहीं सकते, है ना। सुमन कल्याणपुर को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि, उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: आज है 1 जून, और 1 जून 1970 को आर माधवन का जन्म हुआ था। जी हाँ, आज उनका बर्थडे है। पूरे FM रेनबो की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। रहना है तेरे दिल में, 3 इडियट्स और तनु वेट्स मनु जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान बनाई, उन्हीं के गीतों के साथ अब आपको मैं छोड़े जा रही हूँ। आपके आरजे दोस्त वैशाली, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हाँ, अपने साथ रखिए अपनों का खास ख्याल। तो विदा दीजिए अपने आरजे दोस्त वैशाली को, बहुत जल्दी हमारी मुलाकात फिर होगी।

अब तक के प्रमुख समाचारों पर। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में चार प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई है और अब ये कीमत 3067 रुपए 50 पैसे होगी। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधानसभा परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान के साथ प्रस्तावित समझौते में परमाणु मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि समझौते में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे आपकी सुबह कैसे रही? अभी इस वक्त तो स्टूडियो की घड़ी मुझे कह रही है कि प्रिया 11:03 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये वक्त जो होता है ये होता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। तो चलिए सुनते हैं बहुत से प्यारे गीत और बहुत सी बातें।

मुंबई का मौसम, गाड़ियों की रफ्तार और आपके दिल की धड़कन, जब सब कुछ एक साथ चलने लगे तो समझो सुबह की भागदौड़ खत्म और वक्त हो गया है थोड़ा रुकने का, संभलने का और खुद को रिचार्ज करने का। वैसे फिर एक बार आप सभी श्रोताओं को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन FM रेनबो। और उम्मीद है आपकी सुबह वैसे कि शानदार ही रही होगी और आप तैयार हैं दिन के सबसे बेहतरीन सफ़र के लिए। अब ये जो वक्त है ये है ब्रेक फ्री कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में बस यूं ही बातें होगी, यूं ही, मतलब होता ना कभी कभी हम यूं ही गपशप करते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि हिट एंड हॉट में कार्यक्रम जो है इसमें आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनाते हैं। लेकिन हिट एंड हॉट में आज आपसे मैं ये गुजारिश करूँगी कि गायिका सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं है और उनके गाए गीतों की फरमाइश आप हमसे कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 और आप लैंडलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं 4515-4132 4515-4133 पर। और बस मई की गर्मी को पीछे छोड़ो और अब बादलों की लिका छुपी और चाय पकौड़ों का मौसम जल्द ही आने वाला है। कल जैसे हमारे यहाँ तो बारिश हुई, मतलब मुंबई की कई उपनगरों में कल जैसे बारिश हुई है, तो बस इंतज़ार है उस पल का कि कब, मतलब जोर शोर से बारिश होगी और ये जो गर्मा गर्म वाला जो मौसम है वो ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। और आज है जून महीने का पहला दिन, साल का छठवा महीना शुरू हो चुका है और वैसे सोचते हैं तो कितनी जल्दी ये साल बीत गया ना। वैसे जून आते ही हम मुंबईकर्स के दिल में बस एक ही ख्याल आता है, बॉस बारिश कब आएगी। तो चलिए बारिश का इंतज़ार करते हैं और गर्मी से ब्रेक पाने के लिए असली मज़ा तो मानसून में ही है, ये हम जानते हैं। वैसे जब तक बारिश नहीं आती है तब तक अपनी लाइफ की बोरियत से ब्रेक पाने के लिए आप क्या करते हैं हमें ज़रूर बताइए। तब तक सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

रंगरेज की बात हो रही है, तो जी हाँ, ये जो रंगरेज है अभिनेता आज आर माधवन, जी हाँ, वो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और फिल्म रहना है तेरे दिल में से लेकर रॉकेटरी द नाभि इफेक्ट तक उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी से हम सभी के दिलों में खास जगह बनाई है, और उन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और चलिए, आर माधवन को आप सबकी ओर से और FM रेनबो की ओर से हम जन्मदिन की ढेरों बधाई देते हैं।

0: हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

इश्क सूफियाना फ्रॉम डर्टी पिक्चर, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आरजे प्रिया है आपके साथ और ब्रेक फ्री कार्यक्रम चल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि बारिश जब तक नहीं आती है तब तक अपनी लाइफ की बोरियत से ब्रेक पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? वैसे सुबह सुबह मैं वैशाली गुप्ता जी का शो सुन रही थी और उन्होंने जोगस पार्क की काफ़ी अच्छी जानकारी दी। सच में मैं ऑफिस आ रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कहीं मैं जोगस पार्क जो है हमारे घर के आसपास होते हैं वहाँ की सैर ही कर रही थी, मज़ा आ गया। तो आपने अपने काम के बीच मतलब बोरियत से निजात पाने के लिए अब जो भी काम कर रहे हैं घर में घर के बाहर 5 मिनट की वॉक ली है सुबह से लेके अब तक 11:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, या अपनी पसंदीदा कड़क चाय पी हो इतनी तपती गर्मी में भी, हमें ज़रूर बताइए। और चलिए बातें तो चलती रहेगी। और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, जब से मैं आई हूँ मैसेजेस आ रहे हैं, पूरे 1 महीने बाद मैं आई हूँ और शायद ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में। और मुझे भी बहुत याद आ रही थी आप सभी श्रोताओं की, आप सभी के नाम रहते हैं लेकिन कुछ मसरूफियत थी। प्रिय सिंगनपुरिया ने मुझे बहुत प्यारा सा पोस्टर भेजा है, गुड मॉर्निंग आपको भी। पंकज मोहर जो है अमरावती से, गुड मॉर्निंग आपको भी। प्रणव शिंदे जी अशोक पाटिल वर्ली से, अजय साखरे विजेंद्र घाटोल है, प्रमोद चिंचोलकर है, डॉक्टर अंजू है जो हमें अंधेरी से हेलो कह रही हैं, राजेंद्र जुठानी जी हैं, रजनीकांत पाटिल, आप सभी श्रोताओं का जी हाँ बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। और आपके जो प्यारे प्यारे मैसेज है उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइए क्या कर रहे हैं अपनी बोरियत से निजात पाने के लिए। और वैसे मैं फिर एक बार आप सभी को कहना चाहूँगी कि हिट एंड हॉट कार्यक्रम जो है जिसमें आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनाते हैं, आपकी फरमाइश लेते हैं, लेकिन आज हम हिट एंड हॉट कार्यक्रम में महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी को याद करेंगे। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी जो मधुर जो आवाज़ है, नाजुक सुरीली सदाबहार आवाज़ जो है जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया है, उनके कौन सा गीत है जो उनका आप सुनना चाहेंगे मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिएगा। 1 से 2 के बीच हिट एंड हॉट में हम ज़रूर उन गीतों को पेश करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि अपनी बोरियत से निजात पाने के लिए क्या करते हैं। वैसे कैलेंडर पर चमक रही है जून की तारीख, 1 तारीख और ऑफिस में अगर आप हैं तो ईमेल्स का सिलसिला जारी है, लेकिन दिल कह रहा है अब थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है बॉस। जितने भी लोग इस वक्त ऑफिस के डेस्क पर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज़रा गहरी सांस लीजिए। बस कुछ ही देर में लंच ब्रेक होने वाला है तो अभी से सोच लीजिए डिब्बे में क्या खाना है, दोस्तों के साथ क्या प्लान है, या आपके घर में क्या स्पेशल पका है, कुछ बताइए। भूख भूख लगती है या नहीं? जैसे वैसे हम एक जगह ऑफिस में थे तो वहाँ पे जैसे ही 12 बज जाते थे हम एक दूसरे को मैसेजेस कर देते थे कि क्या खाना है, क्या मंगवाना है, और ये हमारा सिलसिला लिटरली 2-3 बजे तक चलता रहता था। मज़ा आता है दोस्तों के साथ इस तरह। वैसे घर में क्या पक रहा है मुझे भी बताइए थोड़ा। 11:40 हो चुके हैं, ब्रेक फ्री कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आज प्रिया के साथ, और मेरे 2 सवाल हैं बोरियत से ब्रेक पाने के लिए क्या करते हैं आप, और आज खाने में क्या बना है ज़रा ज़रूर बताइए हमको। और सुनते रहिए FM रेनबो, यहाँ तो हम आपको आपकी जो पसंद के गीत हैं, आपको जो खुशी दे वैसे गीत तो आपको सुना ही रहे हैं।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

11:51 और ब्रेक फ्री कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं। जी हाँ, शुभदा जी मुझे बता रही हैं कि उन्होंने राजमा चावल और पालक पनीर रोटी सलाद और बटर मिल्क ये सब बनाया है, भूख लगी है। और बस पंकज मोहर जी कहते हैं कि बोरियत से छुटकारा पाने के लिए, गर्मी से ये जो बोरियत महसूस होती है, वो FM रेनबो मुंबई के कार्यक्रम सुनते हैं और ये कार्यक्रम सुनने के बाद उन्हें बिल्कुल भी बोर महसूस नहीं होता, वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। और थैंक यू सो मच, विजय जी हैं और शुभ लक्ष्मी जी हैं और सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनाऊंगी आपको। वैसे ज़िंदगी का बात होती है ब्रेक फ्री कार्यक्रम में, कई सारी वैसे ज़िंदगी से जुड़ी बात होती हैं और आपका मूड फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हम ब्रेक फ्री कार्यक्रम लेकर आते हैं। और अभी जैसे कि मैंने पूछा लंच में क्या खाना है, लंच में क्या बनाया है, और आपके मैसेजेस आ रहे हैं, तो चलिए वक्त जो है ना वो पंख लगाकर ऐसे उड़ रहा है कि क्या कहे, और उसका पता ही नहीं चलता। और जब साथ में ब्रेक फ्री जैसा शो हो तो क्या कहे। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मंडे की सुस्ती है ना, अब तक यानी 12 बजने को तो आए हैं, आपकी गायब हो चुकी होगी, क्योंकि अब मतलब एक होता ना वीकेंड के बाद मंडे को ऑफिस जाना, सुबह सुबह मतलब वो भाग दौड़ और पूरे हफ्ते भर की प्लानिंग और बहुत सी चीज़ें होती है अधूरी रह जाती है, फिर प्लानिंग करते हैं नहीं भाई ये सैटरडे संडे कर लेंगे। तो बस यही कहूँगी कि काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी से लेकिन छोटा सा इन सब के बीच ब्रेक लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए तो ठीक है, एक प्यारे से गीत आपको सुनाती हूँ और उसके ठीक बाद 12 बजे आप सुनेंगे प्रमुख समाचार, और प्रमुख समाचारों के बाद जी हाँ म्यूज़िक कैफे में आज क्या होगा खास, इंतज़ार कीजिए क्योंकि मैं यूँ गई और यूँ आई।

हेलो, देखिए कहाँ था ना मैंने. मैं बस यूं गई और यूं आई. 11:58 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री, जो अब अपने आखिरी पड़ाव पार कर चुका है. और मैंने आपसे पूछा था, अशोक पाटिल जी वर्ली से है, उन्होंने कहा है कि वो घर पर खाना बना रहे हैं, चावल दाल आलू की सब्जी पूरी अमरस, और साथ में वो FM रेनबो सुन रहे हैं. और बस मुँह में पानी आ रहा है. और प्रणव शिंदे जी ने बताया कि वो बोरियत से छुटकारा पाने के लिए संगीत सुनते हैं, आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल सुनते हैं और उनका मूड फ्रेश हो जाता है. तो चलिए, सुबलक्ष्मी जी आपको भी थैंक यू. आपने कहा है कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, वैसे आप सभी को पसंद आ रहा है. तो चलिए, ठीक 12 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत समाचार, और उसके बाद म्यूजिक कैफे प्रोग्राम है. क्या है खास, सुनते रहिए, कहीं मत जाइए.

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, 12 बज चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना भी आज जारी की गई। यहां पर 18 जून को मतदान होगा। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। इनमें मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को पदोन्नत किया गया है। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर पिछले वर्ष दिसंबर में हस्ताक्षर किए गए थे, जो आज से लागू हो गया है। भारत के लिए ओमान के साथ व्यापार समझौता रणनीति

आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्कत का अधिकतर तट होर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर स्थित है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने वरिष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके गायन में मधुरता

श्रोताओं का बहुत बहुत तहे दिल से मैं आरजे प्रिया स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज का दिन कुछ खास है। जी हाँ, आज है विश्व पेरेंट्स डे, यानी वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत जो कहते हैं ना गिफ्ट है, वो है हमारे माता पिता। और तो अपने सभी कामों को एक तरफ रख दीजिए और अगले एक घंटे के लिए हमारे साथ हो जाइए कनेक्ट, क्योंकि आज जैसे कि विश्व पेरेंट्स डे के मौके पर हम शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो सीधे आपके दिल को छू लेगा।

फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। वाकई में ये गीत सुन के इमोशनल हो गई मैं कि ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन धरती पे रूप विधाता का, ये जो हमारे माता पिता है, ये विधाता की पहचान है। और आज हम विश्व पेरेंट्स डे मना रहे हैं और आज का दिन उस रिश्ते के नाम है जो दुनिया का सबसे पहला, सबसे मजबूत और सबसे पवित्र रिश्ता है। और वो दो देवदूत जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी खुशियों के नाम कर देते हैं। कभी सोचा है आपने, हमारी एक मुस्कान के लिए वो हंसते हंसते कितने समझौते कर लेते हैं, हमारे पहले कदम से लेकर हमारी सफलता की हर सीढ़ी तक उनके हाथों का मजबूत सहारा हमेशा हमारे साथ होता है। तो आप सभी श्रोताओं में से जो खुद पेरेंट्स हैं उनको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन श्रोताओं जो आपके पेरेंट्स को, अगर वो है नहीं इस दुनिया में, और अगर तो उन्हें आप याद कर रहे हैं, तो बड़े ही गुरूर के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ उन्हें याद कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका ये जो अस्तित्व है वो अभी है। और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी या पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो बस अपने आप पर प्राउड फील कीजिए कि वो आपके साथ हैं, और कोशिश कीजिए उनके साथ वक्त बिताने का। आज का ये दिन जो है हमें यही सिखाता है कि ये जो वक्त है ना, हमारे पेरेंट्स के लिए बेहद अहम है। उनके साथ बिताने के लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए। तो आप सभी को फिर एक बार पेरेंट्स डे की शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी वजह से हमारा घर होता है, उनकी वजह से हमारी दुनिया शुरू होती है।

12:15 हो चुके हैं और आज हम हमारे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, माता पिता को, उनकी उन्होंने जो हमारे लिए काम किया है, हमारे लिए जो वो जी रहे हैं, उससे सलाम करने का, उसके प्रति एक आदर भाव व्यक्त करने का आज दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। और सच कहती हूँ, जब मैं पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता है। और आप लोगों में से भी कई लोगों के कॉल आए। जगन्नाथ केदारे सर हैं जो हमें सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी वो भी इमोशनल हो गए और उन्होंने भी विश्व पेरेंट्स डे के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन उस रिश्ते के नाम है जो दुनिया का सबसे पहला, सबसे मजबूत और सबसे पवित्र रिश्ता है, माता पिता का। और क्या कहें, 1 जून जो है ये मनाया जाता है माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उन्होंने जो योगदान दिया है, उन्हें सम्मान देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल पता है, इस हर जैसे कोई भी दिवस या दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उसकी एक स्पेशल हर साल थीम होती है। तो उसी तरह से आज विश्व पेरेंट्स डे की थीम है माता पिता के लिए एक साथ, यानी माता पिता के जो एफर्ट्स है उसके लिए हम सभी को एक साथ आना है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट संदेश दे लेकर आया है ये दिन। ये संदेश ये है कि सिर्फ पेरेंट्स जो है उनको जो बच्चों को पालन पोषण के लिए वो जो मेहनत करते हैं, एफर्ट्स देते हैं, तो उनके प्रति पूरे समाज, समुदाय, शैक्षणिक संस्थान या सरकार जो भी हैं, इनको भी उन्हें प्रेरणा देते रहना चाहिए, उनकी भूमिका को समझना चाहिए, उनके साथ खड़े होकर उनके दायित्व को निभाना भी चाहिए। और यही संदेश लेकर इस साल का विश्व पेरेंट्स डे आया है। और पेरेंट्स डे की बात हो रही है तो प्रणव शिंदे जी ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि बंद किस्मत के लिए कोई ताला नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माता पिता के चरणों में उसकी झोली कभी खुशियों से खाली नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है। और आप सभी जो है इस वक्त पेरेंट्स डे के मौके पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा कि आप सभी पेरेंट्स हैं, और जिनके भी पेरेंट्स हैं या नहीं है, बस उनके प्रति हमें एक आदर भाव व्यक्त करना होगा। और ये सिर्फ एक ही दिन का सवाल नहीं है कि 1 जून आ गया, पेरेंट्स के बारे में उनको विश करो और उनकी बातें करो। तो ये जो पेरेंट्स हैं ना, ये हमारी फैमिली बनाते हैं, ये हमारी दुनिया बनाते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो उनकी डांट में छिपा प्यार हम तब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैसे जब जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी वो हर डांट हमारी भलाई के लिए थी, ये हमें समझ में आता है। फिर माँ का वो आंचल जो धूप में छाँव बन जाता है, और पिता का वो कठोर कंधा जिस पर बैठकर हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, वाकई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका क्या कहना है इस बारे में, ज़रूर हमें बताएं। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
3: इंटरनेट बैंकिंग,
2: मोबाइल बैंकिंग,
3: व्हाट्सएप बैंकिंग,
2: ईकेवाईसी,
3: एनईएफटी, आरटीजीएस,
2: आईएमपीएस,
3: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
2: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। 12:31 हो चुके हैं और हम पेरेंट्स डे मना रहे हैं। और हमारे श्रोता संजय दर्शन लिखते हैं कि माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती है, बच्चे की कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे। बिल्कुल सही, सब कुछ मिल जाता है बाजार में, पर माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया नहीं मिलता। और पंकज मोहर जी का भी मैसेज आया है और वो कहते हैं कि मेरा परिवार ही एफएम रेनबो का परिवार है और आप सभी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और जब भी पेरेंट्स की बात होती है ना तो दिल भर आता है। राजेंद्र जुठानी जी ने भी पेरेंट्स डे के मौके पर आप सभी श्रोताओं को और एफएम रेनबो के पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। और क्या कहे, माता पिता की जब बात होती है तो बहुत, अभी देखिए ना, अभी इंटरनेट और मोबाइल ने हमारी पूरी ज़िंदगी आसान

बना दी है, सब कुछ आसान है, लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्या इन स्मार्टफोन और एआई के ज़माने में हमारे बच्चों की दुनिया बहुत तेज़ी से नहीं बदल गई? बिल्कुल बदल गई है। आज बच्चा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे हैं, आज के ज्ञान के समंदर यानी स्कूल और किताबों से निकलकर बच्चों की दुनिया डिजिटल मंचों पर शिफ्ट हो चुकी है। और ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना या स्कूल भेजना नहीं रह गई है। आज के माता पिता उससे कई बढ़कर है, वो बच्चों के सिर्फ पालन पोषण करने वाले नहीं रहे हैं बल्कि उनके लाइफ कोच बन गए हैं। बिल्कुल, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा खाने पीने लग जाए तो थोड़ा हम रिलैक्स हो जाए, और हमें लगता है चलने फिरने लग जाए तो चलो भाई थोड़ा ध्यान अपनी तरफ दे देंगे, फिर स्कूल जाने लगता है तो लगता है कि चलो वो एंगेज हो गया है, लेकिन बाद में उस स्कूल में जो पढ़ाई होती है, होमवर्क होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, माता पिता जो भी है घर में उपस्थित है वो उसमें लग जाते हैं, फिर सोचते हैं कि कॉलेज जाने लग जाएगा तो चलो तब हम थोड़ी निजात पालेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होके खुद के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन जब वो कॉलेज जाने का वक्त आता है और उसके करियर को उन्हें चूज़ करना होता है, उसमें भी उनका पूरा वक्त वो लगा देते हैं, दिलो जान से पूरी पूंजी होती है, जो बच्चा कहता है, बच्चे कहते हैं वो पूरा करने में लग जाते हैं, फिर कहते हैं चलो एक बार बच्चा सेटल हो जाएगा। सेटल उसे करने के लिए भी माता पिता, मतलब उनकी ज़िंदगी हमारे इर्द गिर्द कुछ इस तरह से घूम रही होती है कि उनको अपने बारे में सोचने का मौका ही शायद मिलता नहीं है। तो आज की जो पेरेंट्स हैं ना, इनके सामने काफ़ी चैलेंजेस हैं। एक वक्त था जब बच्चे बस स्कूल जा रहे हैं और खिलाया, उनको कपड़े पहना दिए, वो सो गए, वो खेलने गए। अभी हर वक्त बच्चों पर सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र रखनी पड़ती है, वो कहाँ गए हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, और उनके दोस्त कौन हैं, वो किन के घर में जा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, इन सारे सवालों के घेरे में माता पिता आ चुके हैं। वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं उनकी अलग कठिनाइयाँ होती हैं, पूरे हफ्ते वो जी जान लगाकर बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें मिलता है तो पूरा दिन वो बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चे को भी उनके लिए एक दिन मिलता है। तो ये जो हमारी दुनिया है ना पेरेंट्स की, आसान नहीं रही है, वक्त के साथ जिम्मेदारियां कम नहीं बल्कि और बढ़ गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। और बच्चों को संभालते संभालते ये जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, खुद की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, और ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी क्या है ये भी हमें बताइए। सुनते रहिए FM रेनबो, जहाँ पर है आज प्रिया आपके साथ।

यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, और जब पेरेंट्स साथ में होते हैं ना तो ये जिंदगी का सफर कितना आसान होता है ना। कोई टेंशन नहीं, पता है वो सब टेंशन ले लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें बता दो, पता है वो सॉल्व कर लेंगे। और कहते हैं कि मातृ देव भव पितृ देव भव, यानी कि माता और पिता ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। बचपन की वो उंगलियां थाम कर चलना सिखाने वाले कदम, और हमारी हर जिद को चुपचाप पूरी करने वाले पिता के पसीने की वो बूंदे, क्या हम कभी उनका मोल चुका सकते हैं? अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा, हम सभी को करना चाहिए। जवाब तो वही है कि ये मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। हम चाहे दुनिया में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उनकी ममता और त्याग के आगे हमेशा हम छोटे ही रहेंगे। तो आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, बल्कि आज ही ये संकल्प लेना ज़रूरी है। अगर आपके माता पिता है, पेरेंट्स हैं, तो उनके पास जाइए, अगर नहीं है तो उन्हें याद कीजिए, और उनकी तस्वीर के सामने जो आपकी आंखों में है, आपके घर में होगी, और उनके सामने नतमस्तक हो जाइए। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उन्हें गले लगाइए, क्योंकि वो कभी नहीं कहेंगे आओ हमें गले लगाओ, क्योंकि आप बड़े हो गए हो ना। अब उनका आशीर्वाद लीजिए, मांगिए मत, वो तो वैसे भी दिन रात देते रहते हैं। और उनसे कहिए, ये ज़रूर कहिए लेकिन, कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम दोस्तों से कहते हैं, बाहरी दुनिया में हम सबके सामने प्यार का इजहार करते हैं, सबसे कहते हैं, सबको बताते हैं कि हम कितने रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऑफिसेज में हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, जताते हैं, लेकिन कभी अपने पेरेंट्स के सामने हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं इस रिलेशन को। हमने बहुत ऐसे ले लिया है कि हाँ भाई है ना, कहाँ जाने वाले हैं। और ये कहाँ जाने वाला जो वक्त होता है ना, ये वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ता है और हम समझ नहीं पाते हैं एक वक्त के बाद कि कहाँ गए। तो बस उनसे कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, अगर वो है आपके साथ, आपके सामने है तो कहिए, और अगर नहीं भी है तो मन ही मन में कहिए कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। और ज़िंदगी की ये जो दौड़ धूप में ना, उन्हें हमारे प्यार और समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई सारे वृद्धाश्रम हैं जहाँ पर अभी किसी वक्त इस वक्त कोई पेरेंट्स हमें सुन रहे होंगे, किसी की माँ, किसी के पिता हमें सुन रहे होंगे, तो बस मैं यहाँ से कहूँगी कि हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, और बस इतना ही कहूँगी। और मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी

ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती हैं दुनिया की नज़र, माँ बाप की दुआओं में असर बहुत है। अपने माता पिता की उंगली थामे रखे, उनका सम्मान करें, क्योंकि वो है तो हम हैं। विश्व पेरेंट्स डे के मौके पर बस इतना कहना चाहूँगी कि माता पिता को हम प्यार करते हैं, ये बताने के लिए किसी विशेष दिन की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक भावना होती है, दिन में एक बार। वो बूढ़े हैं, यंग हैं, जो भी है, उनको गले लगिए, प्यार से गले लग जाइए बस, और देखिए फिर आगे क्या होता है। एक तरह का चमत्कार हो जाएगा, और होता भी है। और आप सभी को म्यूज़िक कैफ़े में ये जो प्रोग्राम था आज हमने पेरेंट्स डे के मौके पर किया है, कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। मैं हूं आरजी प्रिया। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जहां पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम हिट एंड हार्ट। और श्रोताओं, आज इस महफिल में एक ऐसी उदासी छाई है, संगीत जगत में उदासी छाई है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भारतीय संगीत के सुनहरे दौर की मखमली और सुरीली आवाज़ पद्म भूषण से सम्मानित गायिका सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं है। 31 मई को उनका निधन हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आज ही टेन हॉट में हम सुनेंगे सुमन कल्याणपुर जी के गाए गीत।

सुमन जी का जाना संगीत जगत के लिए एक ऐसा शून्य है जिसे भरा नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ में वो जादू था, वो ठहराव था जो सीधे दिल को छू जाता था। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी आवाज़ से, अपनी गायकी से एक अलग और शानदार पहचान बनाई। आज FM रेनबो का पूरा परिवार और आप सभी श्रोताओं की ओर से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। और हमारे कई सारे श्रोता हैं जिन्होंने सुमन जी के गाए गीतों की फरमाइश की है, जिनमें है चेतन कुमार, अजय साखरे, नितिन स्वामी, प्रकाश शिंदे, संदीप कुमार, और ये जो है पदमपुर ज़िला श्री गंगानगर से जी है मेहर अरोड़ा और उनका पूरा परिवार, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, रजनीकांत पाटिल जी है, विजेंद्र घाटोल है, हितेंद्र दास है, शुभदा जी है, फिरोज सिंगनपुरिया जी हैं, राजेंद्र जुठानी जी हैं, प्रणव शिंदे, संजय दर्शन, प्रमोद चिंचोलकर, श्रेया राउत, नीले मिलेश गजानन राउत, पंकज मोहड़, धनंजय, आप सभी जो श्रोता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक पाटिल है, तो आप सभी के पसंद के गीत हम सुनाएंगे। और चलिए एक और गीत आपको सुनाती हूँ और कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ।

आप सभी श्रोताओं की ओर से सुमन कल्याणपुर जी को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके गाए गीतों की फरमाइश कर रहे हैं। कुछ गीत अगर सिस्टम में मौजूद नहीं है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुमन जी के जितने भी प्यारे गीत हैं आपको सुनाओ। वैसे उनके गाए हर गीत को हम प्यारा कह सकते हैं, तो चलिए एक और गीत सुनाती।

सुमन जी के गाए ये वो नगमे हैं जो हमेशा हमारे दिल को छूते रहेंगे, गूंजते रहेंगे। और उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली समेत कई भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा था। और उनके गाए 800 से भी ज़्यादा गीत इस बात का सबूत हैं कि उनका संगीत कितना समृद्ध था।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: समाचारों के बाद फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 1:41 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट एंड हॉट, जहाँ पर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं गायिका सुमन कल्याणपुर को।

1:54 हो चुके हैं और आप सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम ही 10 हॉट चल रहा है और आज प्रिया है आपके साथ। और आप सभी श्रोताओं के जो नाम हैं वो फिर एक बार दोहराऊंगी, क्योंकि आप सभी ने लगभग एक जैसे ही गीतों की फरमाइश की थी। सुमन जी की गाए हुए, विजेंद्र घाटोल अकुला से पंकज मोहर, चेतन कुमार, महेश शेट्टी, शुभ लक्ष्मी मस्तकर, और हमारे जो श्रोता है रोहित राज, पीयूष कुमार, आर्यन राज, मुजफ्फर नगर बिहार से, अशोक पाटिल वर्ली से थे, प्रमोद चिंचोलकर, शुभधा जी, मुकेश कश्यप, हीरामणि वर्मा, अजय साखरे इंदौर से, नितिन सावंत ऐरोली से, प्रकाश शिंदे, संदीप कौर, मेहर अरोरा और रजनीकांत पाटिल, हितेंद्र दास, फिरोज सिंगनपुरिया, राजेंद्र जेठानी जी, प्रणव शिंदे, संजय दर्शन, श्रेया मिलेश राउत, धनंजय नवी मुंबई से, और आप सभी श्रोताओं ने जिन गीतों की फरमाइश की, जो गाए हैं सुमन कल्याणपुर, मैंने कोशिश की है वो सभी गीत आप तक पहुंचाने की, आपको सुनाने की। तो सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये जो मीठी आवाज़ है वो हमेशा हम सभी के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। और आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। और उसके बाद ठीक मुझे दे दीजिए आप आर्ज प्रिया को इजाज़त, बेहद जल्द आपसे मुलाकात होगी ये वादा करती हूँ। किशोर वाघ, जगन्नाथ केदारे, अयाज चौधरी, ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी इनमें से कई गीतों की फरमाइश की थी। तो सुनते रहिए FM रेनबो, कहीं मत जाइए। मैं बेहद जल्द आप सभी से मिलूंगी।

0: நாகாலாந்து, மணிப்பூர், திரிபுரா, ஒடிசா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி அண்ட் வெஸ்ட் மத்திய பிரதேஷ் டுடே. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Sir Firozi. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउंग ह्लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउंग ह्लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: यह मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
4: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
5: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
6: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
5: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
7: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश

0: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
3: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर

टी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: नमस्कार, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और ये प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। वक्त हुआ है 5:03:09. मैं हूँ वसीम, आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ रात 8 बजे तक। उम्मीद है कि ये सफ़र बहुत खूबसूरत होगा। 5 से 6 ऑफकोर्स ये होने वाला है लव यू ज़िंदगी, फिर अंदाज़े बयां 6 से 7 और उसके बाद 7 से 8 हम तुम, जो आप लोगों की डेडिकेशन और रिक्वेस्ट रहेंगी। बीच बीच में अपडेट्स आते रहेंगे, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को आज की शाम के इस खूबसूरत गाने के साथ। आगाज़ करते हैं लव ज़िंदगी का और आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। तो ये दो गाने बैक टू बैक, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे, करते हैं और भी बातें दिल से दिल तक।

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: जी हाँ बिल्कुल, आप लोग जुड़े हुए हैं लव यू जिंदगी पर और 5:13:57 हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर गानों की तरफ रुख करेंगे। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, और प्यार जिंदगी है, जिंदगी को लेकर प्यार से जोड़ा गया है, प्यार को जिंदगी से। और क्या आप लोग भी कोई इस तरह का इत्तेफाक रखते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं 8657661071 पर। आप बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है जिंदगी क्या है आपके लिए। मैं करूँगा कुछ बातें उसी को लेकर, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राजेंद्र परमार, प्रणव शिंदे, फिरोज सिकनपुरिया, संजय दर्शन, वैदेही, पंकज मोहर, आप सभी लोगों का शुक्रिया बने रहने के लिए हमारे साथ इस वक्त। और उम्मीद है कि ये जो दो गाने मैंने आप लोगों को सुनाए, देर लगी लेकिन हमें समझ तो आ गई बात कि आखिर ज़िंदगी किस तरफ रुख ले रही है या हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं। हम ज़िंदगी के तरीके से जी रहे हैं या ज़िंदगी हमारे तरीके से, बहुत सारे सवाल इसके जवाब, क्या वो ज़रूरी है भी या नहीं भी पता नहीं, ये भी एक कन्फ्यूजन है। क्या लगता है आप लोगों को शेयर करिए 8657661071 पर। फिलहाल एक ब्रेक और उसके बाद गानों की तरफ रुख करते हैं आप और हम लव यू जिंदगी पर।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। 5:30 हो गए हैं और आप लोग हैं यहाँ पर वसीम के साथ न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। और ये प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। और आप लोगों ने गाने तो सुने और आप लोगों ने इन्जॉय भी किया, आप लोगों के फीडबैक भी आने, ज़िंदगी को लेकर जो मैंने बात कही थी वो भी आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की है। और एक गाना मैंने जो आप लोगों को सुनाया, खामखा नहीं, गुलजार साहब कितना कुछ लिखते हैं और उसमें अगर विशाल भारद्वाज साथ में हो अगर सिंगिंग में, तो उसका असर कुछ अलग ही

ही होता है, खामखा नहीं। और अश्क आँखों में कभी भर के देखना, आईना कभी डर के देखना, मतलब ये एक सोचने पर मजबूर करने वाली बातें कि इस तरह से होगा क्या, लेकिन चलो करके देखते हैं, है ना। तो ये एक मिजाज अलग, सिर्फ सुनना नहीं, उन ख्यालों की तरफ भी ले जाना। और खामखा नहीं, ये बेवजह बेसबब बोल भी रहे हैं उसमें, आप सुनिएगा फिर कभी आपको मौका मिले। वैसे ओए बॉय ओए बॉय चार्ली भी एक ट्रैक है जो आर्य बब्बर के साथ इस फिल्म में अनुष्का शर्मा का है, लेकिन फिलहाल चार्ली नहीं, विराट कोहली ने बाजी मार ली। और आप सभी बने हुए हैं मेरे साथ और बने रहिए। जिंदगी को लेकर बहुत सारी बातें आप लोगों ने शेयर की, मुझे लगता है ये जो अगला गाना है द बेस्ट यारी इज दिस टाइप ऑफ अतरंगी टाइप। बने रहिए दिल से दिल तक, और बताइए क्या आप इत्तेफाक रखते हैं। स्टे ट्यून्ड।

5:45 और 20-21 सेकेंड्स हो चुके हैं और ये प्रोग्राम है लव यू ज़िंदगी। आप लोग बने हुए मेरे साथ एफएम रेनबो पर। और अजय साखरे, शुभदा, थैंक यू सो मच आपने जो मेंशन किया उसके लिए, और कॉफ़ी का भी जिक्र किया। संजय दर्शन, पंकज, अशोक पाटिल वराली, महेश बोहरा, राजेंद्र परमार, मीना जी, प्रणव शिंदे, फिरोज़ वैदेही, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। और ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी बातें आप लोगों ने, लेकिन अतरंगी यारी जो मैंने कहा था, मुझे लगता है कि कई सारे लोग उससे इतफाक़ रखते हैं। खूबसूरत सफ़र है जिसे हर हाल में मुस्करा कर जीना चाहिए, प्रणव कहते हैं ऐसा, बिल्कुल। और ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, जीना आना चाहिए, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सही है। बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है ना ज़िंदगी को, लेट्स कीप इट लाइट। बहुत अच्छी बात ये कही है कि जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय आपका समाधान भी साथ आता है, इसीलिए परेशान ना हो। अशोक, थैंक यू, समस्या से दूर रहने की कोशिश करें। संजय, थैंक यू, पंकज, आप सभी लोग

बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ गाने और हैं ये लव जिंदगी में, और उसके बाद प्रोग्राम मुकम्मल होगा, फिर उसके बाद होगा न्यूज़ अपडेट एंड देन अंदाज़े बयां 6:15 से। और आप लोग बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं लाइफ में, और कभी कभार वही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब एहसास होता है कि हाँ हमने वो मिस्टेक या वो गलती हमसे हुई, लेकिन उसे दोहराना एक आदत है, गलतियों को दोहराना एक आदत है। आदत बदल जाएगी तो कुछ अगर मुश्किलें हैं तो वो भी बदल जाएंगी, टल जाएंगी और कभी लौट कर नहीं आएगी। फिलहाल ये गाने लौट कर ज़रूर आएंगे यहीं FM Rainbow 107.1 दिल से दिल तक।

0: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
1: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, 5:58 हो गए हैं और लव यू जिंदगी बस एक और गाना है इससे दूर है, फिर उसके बाद ही मुकम्मल हो जाएगा। और रजनीकांत और मराठी स्पीच। अच्छा चलिए, आपने जो ये मैसेज भेजा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कड़ी मेहनत लोगों के जो कैरेक्टर है ना उस पर रोशनी डालती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ अपने जो स्लीव्स होते हैं वो चढ़ा लेते हैं, कुछ अपने अहंकार को, और कुछ करते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते, है ना, बिल्कुल भी काम नहीं करते। जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक कुछ भी काम नहीं करता। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ होती है ज़िंदगी में, गिव योर बेस्ट, जो भी काम करो हार्डवर्क करो और इन्जॉय करो लाइफ को, बहुत ज़रूरी है। और इतिहास बनाओ, इतना सीरियस क्यों होना, हर काम को उसके तरीके से करना, और आपको आना वो भी ज़रूरी है, लेकिन जस्ट कीप इट सिंपल और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। कितने सारे ऐसे मौके होंगे, कितने सारे ऐसी बातें होगी ज़िंदगी में जो बहुत सारी उस वक्त के लिए आपको बहुत अहम लगती थी, लेकिन उसके बाद आज आपको वो बातें याद भी नहीं होंगी। तो होता है वक्त हर बात को, ज़्यादातर ऐसा होता है कि भुला देता है, या ये होता है कि आप उसे याद नहीं करना चाहते, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को लेकर हमारा अगला गाना है, और ये गाने के बाद अपडेट होंगे न्यूज़ अपडेट 6:05 से और 6:15 तक जो चलेंगे, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा अंदाज़े बयां, जिसमें शेर व शायरी, गज़लें, है ना, सूफ़ी नगमे, फिल्मी गज़लें। फिल्मी गज़लों के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर नहीं तो फिर अगर आप चाहें तो आज फिर दोहरा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल पढ़ते हैं इस ज़बरदस्त गाने की तरफ। इसके बोल, इसकी बीट्स, इसके लिरिक्स, इसका अंदाज़, इसको कैच करिए, और एक एटीट्यूड है इस गाने में, और जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं एक वर्सेस जो मैचेस होती है ना, कि कोई आपके ओपोनेंट होते उसको ललकारना और उनसे कहना कि आई एम रेडी टू लिव एंड आई एम रेडी टू डू द वे ज़िंदगी में काम करना चाहिए। आइए सुनते हैं आप और हम ये गाना, और उसके बाद मिलते हैं 6:45 अंदाज़े बयां में, स्टेडियम दिल से ही दिल तक।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आदाब, गजल कव्वाली फोक और सूफी की महफिल सजेगी रेनबो के साथ प्रोग्राम अंदाज़े बयां में शाम 6 से 7, तो ट्यून इन करें 107.1 एफएम रेनबो जनाब।
2: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और प्रोग्राम अंदाज़े बयां शुरू हो चुका है। वैसे अभी जो अपडेट्स आप सुन रहे थे उसमें सुमन कल्याणपुर जी का जिक्र हुआ और उनके गानों को, उनको ट्रिब्यूट जो दिया गया, उनको एक ऐसी आवाज़ जिसको सुन सुनकर, उनके गाने सुन सुनकर, कई बार हमने हमारे शोज़ पर भी वो गाने प्ले किए हैं और आपने उसके रिक्वेस्ट भी किए हैं, कई सारे ऐसे गाने, एक आवाज़ जो बस अब याद बनकर रह गई और हमारे बीच नहीं रही, उन्हें श्रद्धांजलि और मिस करेंगे बहुत। लेकिन यही है कि जब इंसान इस दुनिया में रहता है, हर वो रिश्ता, उसकी अहमियत, उसको अहम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात

चले जाने के, अगर जो पास हमारे रहता है वो बस उसकी यादें, उनकी यादें रह जाती हैं, एक ऐसा अंदाज, कोई अगर भाषा आप कह लें जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, असमीज, गुजराती, कन्नड़, अंगिका, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया, पंजाबी, कौन सी वो भाषा नहीं थी जिनमें उन्होंने गाने नहीं गाए अपनी खूबसूरत आवाज़ में। और हिंदी गानों का अगर जिक्र करें, मुझे ऑलरेडी कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके रिक्वेस्ट जो 7 बजे जो प्रोग्राम शुरू होगा 7:10 के आसपास, तो उसमें आप ज़रूर हमें उनका कोई गाना सुनाइएगा, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप हमारे साथ हैं अंदाज़े बयां पे, और सुमन कल्याणपुर जी हमेशा हमारे साथ रहेंगी जिंदगी भर। हम बढ़ते हैं इन गज़लों के, इन सूफी नगमों की तरफ, और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कुछ ऐसी गज़लें जिनको सुनकर ये अंदाज़े बयां का माहौल और भी खूबसूरत हो जाएगा। स्टे ट्यून मेरे साथ, दिल से दिल तक।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

कैसर की लिखी हुई गजल है।

क्या आवाज़, क्या अंदाज़। जगजीत साहब को भी आपने सुना, पंकज उदास साहब को भी आपने सुना, दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुमन कल्याणपुरी जी के बारे में हमने बात की, तो ये आवाज़ें जो इस वक्त हमारे साथ है, बस यही है उनकी यादें, जो उनका अंदाज़, इन आवाज़ों में इतना दर्द, इतना एहसास। अच्छा, वो मक्ते का मायने आपको पता ही होगा कि जो पेन नेम होता है, तखल्लुस जिसे कहते हैं शायर, और मतलब जो ओपनिंग लाइन ऑफ गज़ल, अशार, जो भी कह लें, मिसरा कह लें, तो गज़ल के ये फॉर्मेट होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे, और उसके बारे में कभी और मैं आपसे ज़रूर ज़िक्र करूँगा। वक्त की राह में गुज़रते पलों का हिसाब क्या रखना, वक्त की राह में गुज़रते पलों का हिसाब क्या रखना, जो खुशी दे जाए

इस जिंदगी में बस वही याद रखना। और तमन्ना है इस बार बरस जाए ईमान की बारिश, के लोगों के ज़मीर पर धूल बहुत है। चलिए इन्हीं शेर व शायरियों के साथ मैं लेकर आप लोगों को चलता हूँ अब फिल्मी गज़लों की तरफ, और कुछ ऐसे अशआर जिसमें एक राइमिंग हो, रदीफ़ और काफिया जो मिला हो एक तरन्नुम के साथ, मतलब एक ट्यून के साथ एक अच्छे खासी। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, 7 बजे होने वाले हैं अपडेट्स, और उसके बाद 7 बजे आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी आप लोग मुझे भेज रहे हैं अभी से, वो मैं देखूंगा एज़ पर सीक्वेंस मैं जितनी प्ले कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट इतने टाइम में प्ले करवाना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी। फ़िलहाल सुनते हैं ये फिल्मी गज़लें, और आप बने रहिए मेरे साथ। तो फिल्मी गज़लें, फिल्मी नगमे, अंदाज़े बयां पर आप हैं दिल से दिल तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7 to 8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स.
2: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और ये प्रोग्राम हम तुम शुरू हो चुका है. अंदाजे में मुकम्मल हो गया न्यूज़ अपडेट्स भी और साथ ही साथ आप और हम यहाँ पर हैं बिल्कुल लाइव. आप हमारे स्टूडियो की घड़ी से घड़ी मिला लीजिए और ताल से ताल. वैसे आप कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी सुमन कल्याणपुर जी के गानों को लेकर, तो मैं ज़रूर सुना रहा हूँ उसमें कई सारे रिक्वेस्ट में. एक रिक्वेस्ट ये भी है और एक गाना जो आज कहीं ना कहीं मुकम्मल ठहरा, वो गाना कौन सा है मैं आपको सुनवाता हूँ. आप सुनिएगा और जो बात मैं कह रहा हूँ उसे महसूस करिएगा. चलिए शुरू करते हैं ये प्रोग्राम और बताइएगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था. 8657661071 पर बनी रहिए मेरे साथ, दिल से दिल तक.

7:22 और 14:15 सेकेंड। मीना जी, आपको ये गाना सुनना था और कई सारे लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस वॉलेट के लिए आपने ये मैसेज किया है, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आप लोगों ने ये गाने सुने, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही है और मैं उसे ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। वैसे किसी बात को कहने के लिए ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती कि जो इंसान आपकी निगाहों को पढ़ सकता है वो आपकी अनकही बातों को भी सुन सकता है, समझ सकता है कि नहीं। इन बातों को आप मानते हैं या नहीं मानते, जानते हैं या नहीं जानते, खैर हमने आप लोगों के साथ शेयर कर ली ये बातें। और मैं लेकर चलता हूँ आपको अगले गानों की तरफ, आप लोगों की रिक्वेस्ट है ये और उन्हें सुना देता हूँ। काजल जी, आपकी रिक्वेस्ट है ये, और भी रिक्वेस्ट, इसके बाद सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, हम तुम पर।

0: कल दिशा स्कीम च्या टेली लॉ न्याय बंधू आणि कायदा साक्षरता तसेच जागरूकता आणि कायदेविषयक मदतीसाठी टेली लॉ च्या 1-4-4-5-4 या टोल फ्री नंबर वर तसेच www.tele-law.in या वेबसाइट वर माहिती मिळवू शकता.
1: आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट रूल करेगी रेनबो की प्लेलिस्ट एवरी इवनिंग 7-8 PM इन प्रोग्राम हम तुम और गाने तुम्हारे ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स.
2: एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है. 7:31 हो गए हैं स्टूडियो घड़ी में. और वैसे राउडी राठौड़ फिल्म की अगर बात करें तो कमाल है. 1 जून 2012 और 26 चल रहा है, 14 साल गुजरे. प्रकाश थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, अच्छा लगा और आपने हमारे साथ ये बात शेयर की और आपने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट के साथ साथ ये बात भी शेयर कर दी. तो चलिए हम आपको उसका गाना सुना ही देते हैं. और फिरोज़ गिव मी सम ऑप्शंस. आपने जिस गाने को लेकर सुमन कल्याणपुर जी का जिक्र किया था वो उसमें से कुछ गाने लता जी के थे, तो आप उस पर गौर करिए और आप मुझे मैसेज फिर से करिए और मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ वो गाने प्ले करने की. फ़िलहाल ये रहे आप लोगों के रिक्वेस्ट 107.1 FM रेनबो पर.

0: 7:42 हो गए हैं और 30:30 और ये प्रोग्राम चल रहा है हम तुम, और हमारे साथ भी यहाँ पर कोई मौजूद है। एंजेला आ गई है स्टूडियो में। हाय एंजी, हाउ आर यू?
1: गुड।
0: तो अब ये रहने वाली 8 बजे से आप लोगों के साथ, और मैं तब तक यहाँ से जा चुका हूँ ये प्रोग्राम्स, और आप लोगों की रिक्वेस्ट मुझे अभी तक आधी चली जा

रही है, कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ये सॉन्ग भेजा था और आपने ये प्ले कर दीजिए, वो कर दीजिए। आई मीन इतने सारे लंबी सी फहरिस्त है और उसमें से कितने सारे गाने हम प्ले करेंगे। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल हैं आपको सुना दें, और सुमन कल्याणपुर जी के बारे में कई सारे गाने हमने स्टार्ट में ही आप लोगों को सुना दिए हैं, तो ये सिलसिला जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे गाने भी आते रहेंगे। और अभी एक रिक्वेस्ट है प्रकाश, तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने प्ले कर दी है फ्रॉम द मूवी राउडी राठौर, और अब गहरा इश्क फ्रॉम नीजा, और एक और गाना उसके बाद फिर मिलते हैं गाने के उस पार। स्टे ट्यून, दिल से ही दिल तक।

वेलकम बैक। 7:50 41 सेकेंड्स हो चुके हैं मेरे यहाँ से जाने का वक्त हुआ है अंजुला यहाँ पर 8 बजे से। अब ये गानों की रिक्वेस्ट आप लोगों की यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन मेडिटेशन के बारे में जिक्र कर रहे थे आप, और हम मेडिटेशन सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाऊं वर्ड्स में, तो ये है कि एक्सेप्टिंग योर ओन फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक मेडिटेशन है। खुद से बात करना, खुद से मुलाकात करना, क्या हर्ज है। खैर, आप लोग इस पर गौर करिएगा, अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़रूर। मैं चला, आप लोगों से मिलूंगा अगले प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड 107.1 FM रेनबो पर, जय म्यूज़िक के लिए दिल से दिल तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।

0: पूछा।
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से

0: पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Ou Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Ou Mi Aung Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
2: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar

and it burns, burns, burns the rain.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ओरिएंट अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर वक्त हुआ है 10:09, यानी वक्त हुआ है गजलों की गुनगुनाहट का, प्रोग्राम रंगे महफिल का। तो आइए हाथ पकड़ के साथ चलते हैं इन गजलों के। मैं प्रज्ञा तिवारी और

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: FM रेनबो पर आप सुन

हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। गजलों का दौर जारी है। बेगम अख्तर की आवाज़।

और अब बजने को है 12 यानी वो समय जब मैं आपसे लूंगी इजाजत, पर गानों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मेरी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी बात अगले सोमवार रात 9 बजे FM रेनबो पर। तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की गालिबाना धुनों पर। प्रगति वाड़ी की तरफ से।

तेज हवा ने मुझसे पूछा, तो हवा का फैक्ट तेज का, सिर्फ हवा का नहीं तेज हवा का। तेज हवा ने मुझसे पूछा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय

0: अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज करने के साथ बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध में एक बड़ा मोड़ बताया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करेकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 12:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में कितने दिनों के बाद मिले हो। आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: 12:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार

अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

12:57 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे।

जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए दो अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कार्यक्रम सुहानी रात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज एक बार फिर से आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: 1:28 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की

गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गो तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना UBT को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल के साथ। 2:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भुलाए ना बने।

कार्यक्रम भुलाए न बने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस प्रोग्राम को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं, आपका दोस्त अर्चित। कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें जो गाने आप सुनते हैं वो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। तो आइए शुरू करते हैं सोनू निगम जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 2:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए ना बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना

0: 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: दो बजकर 50 मिनट हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अर्चित के साथ।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करिकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ समय छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान

हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ